पैसा भी वहां से पलट कर आ गए थे। बड़ी कोशिश की, मगर वो हमारी कराची की जबान में कहते हैं ना कि अल्लाह मियां ने जलवा दिखाया तो मूसा कंटी। मुश्किल थी ताबे दीद, मगर हमारा मामला क्या था, हमने वहां पर भी उनको मशवरा दिया था मूसा को, हमें भी बारगाहे नाज में लेते चलो मूसा, हमें भी बारगाहे नाज में लेते चलो

जब समा शुरू होता है तो फिर मजामीन खुल जाते हैं। भाई वो और थे जो गिर पड़े बरके जमाल से, मूसा नहीं हूं मैं, मुझे ताबे नजर भी है।